0: है इसे याद कर लेना बेहतर होगा।
1: अतामा का इताइन दिस।
2: सर में दर्द है।
0: अतामा के मायनी है सर, चुनांचे अतामा का इताई का मतलब हुआ सर में दर्द।
1: नेत्स का आरुन दिस।
2: मुझे बुखार है।
0: नेत्स के मायनी है हरारत या बुखार। आरु एक फेल है जिसका मतलब है होना, चुनांचे नेत्स का आरु का मतलब हुआ बुखार होना। इस जुमले से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें सिफत की तरह फेल के बाद भी नदेस लगाया जा सकता है।
2: अब मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
3: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: अब सेहत के कुछ और मसाइल के साथ मशक करें। मसलन आपके पेट में दर्द है तो ये बात किस तरह कहेंगे? पेट की जापानी है
3: ओनाका, ओनाका।
0: और दर्द को कहते हैं
3: इताई, इताई।
0: तो सामीन कोशिश करें।
4: ओनाका गा इताई देस, ओनाका गा इताई देस।
0: और अगर आपको मतली की कैफियत महसूस हो रही हो तो कैसे कहेंगे? चक्कर या मतली जैसी कैफियत को कहते हैं
3: किमोची गा वारुई, किमोची गा वारुई,
1: किमोची गा वारुई इंदेस, किमोची गा वारुई इंदेस।
2: अब आप तबीयत खराब होने की सूरत में दूसरों को आसानी से बता सकेंगे।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज़ मकालमे में मियाँ ने इस्तेमाल किया है, इसे याद कर लें। ओदाई जीनी यानी अपना ख्याल रखें। यह किसी मरीज या जख्मी शख्स से कहा जाता है। ये एक तरह से मरीज के जल्द ठीक होने की तवक्को का इजहार है।
2: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
5: ओदाई जीनी,
6: ओदाई जीनी,
7: ओदाई जीनी।
2: सामीन अब आपकी बारी है तो सुनिए और दोहराइए।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी तबीयत की खराबी के बारे में बताती है।
8: तामसान, खाओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
9: नोदो गा इताई देसु।
8: ओया ओया, सोन्ना टोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा ई देसु यो।
9: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
9: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
2: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर। आज हम आपको बता रहे हैं कि जापान में बीमार हो जाएं तो क्या करना चाहिए।
0: हिरा, आपकी तबीयत खराब हो तो आप क्या करती हैं?
2: इसका ताल्लुक बीमारी से है। मामूली मसले की सूरत में मेडिकल स्टोर से दवा ले लेती हूँ।
0: वाकई बीमारी के अलामात मामूली हों तो मेडिकल स्टोर से दवा लेना आसान है। स्टोर के माहिर अद्वियात को पेट में दर्द या बुखार वगैरह बीमारी के अलामात बताकर डॉक्टर नुस्खे के बगैर दवा ली जा सकती है।
2: लेकिन अगर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो तो क्या किया जाए?
0: ऐसी सूरत में मुतल्लिका शोबे मसलन जनरल फिजिशियन या आँख या कान वगैरह के शोबे के हामिल क्लिनिक या अस्पताल जाना चाहिए। मुआयने के बाद डॉक्टर दवाएँ तजवीज़ करेगा। डॉक्टरी नुस्खा दिखाकर मेडिकल स्टोर से दवा लें। हुकूमत जापान के शोबे सियाहत JNTO की वेबसाइट पर उन तिब्बी इदारों की फहरिस्त मौजूद है जहाँ गैर मुल्की सयाहों के मुआयने की सहूलत मौजूद है। साइट तलाश करने के लिए फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO से सर्च करें। इस वेबसाइट को महफूज कर लेना बेहतर होगा। इसके अलावा सियाहती मराकज या होटल के इस्तकबालिया काउंटर से भी करीबी हस्पताल के बारे में मालूमात ली जा सकती है। और किसी हंगामी सूरत हाल में 119 पर फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई जा सकती है।
2: 119, मैं ये नंबर याद रखूंगी।
0: खुदा करे कि कभी ये नंबर इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, लेकिन बहरहाल इसे याद रखना मुफीद होगा।